अपने पड़ोसी से प्रेम करें, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रेम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हमारा प्रेम में बहुत दिल लगता है। हम हर लोगों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है गांव में कि प्रेम करना नहीं चाहते हैं, और मैं उसके पास जाती हूँ तो उठकर भाग जाते हैं। वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं, मैं प्रेम में करीब रहना चाहते हैं।